विश्राम मंदिरतया तत्सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिन्धुर्भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृत सिन्धुर् चरत परिभूत काल जाल भक्त्य मकरान शीलता मुक्ति नदिका नमस्यामि भक्ति रस सपस्तुति रखिलो भगवन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाय एतस्य भगवद भक्ति रसामृतोपयो निधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्यो विभागेऽस्मिन् भक्ति भेदनिरूपते अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्य भक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्तुता तृतीयात्र सूर्या प्रेमनिरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्